0: A shocking case of medical negligence has led to a child losing his eyesight. In Madhya Pradesh's Sagar district, 19-month-old Vinay Vishwakarma was taken to the Banda Civil Hospital for a cold and redness in the eyes. The child's father has said that after examining the child, the doctor on duty administered an eye drop, along with paracetamol syrup, an injection and other medications. But instead of recovering, the toddler's condition worsened over the next few hours.
1: तो हम बंद डॉक्टर साल लेके आए थे इस टाइम तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा को बोतल लगाई एक पैरासिटामोल शीशी दी एक ड्रॉप दे दी उससे इन्फेक्शन बने या कम दोस्तों नौ सौ दिन चली गया.
0: Given the child's critical condition, he was immediately referred to the district hospital in Sagar, where doctors advised taking him to a bigger hospital. The family then took the child to AIIMS Bhopal. According to the father, specialists at AIIMS informed them that the child had completely lost his eyesight due to incorrect treatment. Their grieved family has lodged a complaint at the Banda police station stating that the doctor is guilty of gross negligence and demanding strict action against the doctor and the responsible staff members. The chief medical and health officer has constituted a committee to investigate the case.
2: इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है. जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी. जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.
0: A visit to a hospital meant to heal has led to a 19-month-old facing a lifetime without sight. And the family's only hope now is accountability and justice. With Himanshu Purohit and Ravish Pal, Bureau Report, India Today.
3: Get Real India story. We hope the child recovers sooner rather than later. Let's turn to our good news today's story. Now, for every student who believes one exam can define an entire future, here's a story that proves otherwise. 4 years ago, Sanket Kumar from Meerut missed qualifying for the JEE Advanced by just 2 marks. Instead of giving up, he chose determination over disappointment. Through self-study and persistence, he not only secured admission to one of the country's premier space institutes, but now has been selected as a scientist at ISRO. It's our good news today's story.
4: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
5: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर 1 साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11th 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
4: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
5: मेरे को IST में admission मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे aircraft से spacecraft तक का जो innovation है, उस चीज़ के मैं introduce हुआ. And वहाँ पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा like space conservative भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का innovation करा कि हाँ, not aircraft, not something, but something related to space, something related to rockets. तो वहाँ से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
4: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, संकेत इंप्रेस्ड द इसरो पैनल विद हिज टेक्निकल नॉलेज एंड हैज नाउ बीन सिलेक्टेड एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर. ही विल बी पोस्टेड टू इसरोस प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी, वेयर रॉकेट सिस्टम्स अंडरगो क्रिटिकल टेस्टिंग बिफोर लॉन्च. हिज फैमिली सेज हिज जर्नी इज प्रूफ दैट वन सेटबैक डज नॉट डिफाइन सक्सेस.
6: बच्चे ने जो सफलता की है वो हमारे लिए तो गर्व की बात है, परंतु पूरे मेरठ शहर के लिए और पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है.
7: आज मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि जो हम हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक सपना देखता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो और किसी रेपुटेटेड पोस्ट पर अपॉइंट किए जाएं, जिससे वो अपना और अपने पेरेंट्स का और देश का नाम रोशन कर.
8: वहाँ पे 12 पैनल के लोग बैठे हुए थे, सबने अलग अलग सवाल पूछे एकदम, लेकिन सारी चीज़ क्लियर करके ये आज उसका इंटरव्यू क्लियर करके इस मुकाम पे हैं कि सारे बच्चों से ऊपर और वाइब्रेशन में एज अ साइंटिस्ट रोल पे लगे हैं आप.
4: from missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO. Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.
3: And we wish the young man

आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख चंदा दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था, बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है।

0: And we have some news at this point in time. The police has got permission from the court to question accused Avinash Shukla inside jail. Investigating officers moved the application seeking jail interrogation. We're telling you about the Mandir donation scam case that has surfaced. The court has approved the request, allowing police to proceed with the questioning with the district jail. Investigators say inputs from family questioning have already revealed details linked to bank accounts, vehicles and other evidence. Police may now move further for custodial interrogation that could bring new leads in this case. Police also recorded the statement of complainant and trustee Krishnamohan, who is the main informant in this case. Police recorded statement of Krishnamohan through video conferencing. Police have asked whether he had ever received any prior information about the alleged theft before the case was formally reported. Also confirming that several facts from him after the inputs received during the course of the investigation. Right, we're going straight across to what...
1: कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे आज रामपुर हो मिलक हो बिलासपुर हो स्वार हो चमरोहा हो इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं उद्योग की बात जब आती है रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है हर नौजवान एक नौजवान जब अपने प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था वह राज्य उस बीमारूपन से उभर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करता है बहनों और भाइयों यही उत्तर प्रदेश है परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे कहीं पुलिस परेशान करती थी कहीं मंडी समिति परेशान करती थी 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क रामपुर का जरी वर्क रामपुर की वायलिन इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है बहनों और भाइयों आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी जनता को प्रताड़ित करती थी उन्हें हतोत्साहित करती थी
0: Alright, remember the Samajwadi Party had raised these allegations also of the chori in the Ram temple. We heard from the Chief Minister going after the Samajwadi Party. Though the donation scam has now been investigated by the police, the matter is in courts as well. I'll tell you a little more about the Ram Mandir donation scam. The probe, of course, continues to widen with the probe extending from the temple premises to the banking system. The Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions on moral grounds. They have been grilled by the police. India Today has accessed exclusive information about the questioning of Champat Rai. The former office bearer of the trust was grilled for 3 hours. Sources say Rai was extensively questioned on the functioning of his trust and the management of donations received. During the probe, Champat Rai strongly dismissed all charges of any wrongdoing. He has admitted to employ needy individuals as part of the trust activities. In the latest development, Radio Maintenance Officer Arjun Deva spent 17 years in Ayodhya and oversaw the temple's CCTV network, wireless systems and donation counting room security has been transferred to Gorakhpur. The SIT had questioned his role, saying his involvement went beyond official duties. Meanwhile, the Vishwa Hindu Parishad has distanced itself from the controversy, saying that the trust alone is responsible for the temple's administration.
2: पूरा का पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, क्योंकि ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। ट्रस्ट किनका है? ट्रस्ट मोदी जी का और ट्रस्ट संघ के भागवत जी का बनाया हुआ है। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है। ट्रस्ट में शुद्ध संघ के आदमी है, ट्रस्ट में शुद्ध भाजपा के आदमी, ट्रस्ट में शुद्ध बीएचपी के आदमी। पूरे के पूरे ट्रस्ट ने चोरी की है, पूरे के पूरे ट्रस्ट ने विश्वासघात किया है। तो जिन लोगों ने यह ट्रस्ट बनाया, यानी मोदी जी और भागवत जी, वो भी परोक्ष रूप से इस चोरी के, डकैती के जिम्मेवार हैं।
0: Well, the donation scam getting bigger. Investigations continue in the manner in which there was a banking system protocol also for counting the cash and the donations received as far as the Ayodhya donation is concerned. But that protocol was violated too. Well, ahead of the Congress MP's visit to Ayodhya, Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai has been placed under house arrest at a hotel. Remember, Congress has been trying to raise this issue. India Today has spoken exclusively to Ajay Rai. Listen in.
3: आपका एक वीडियो देखते हैं हम, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं और आप कहीं कमरे में बैठे हैं, क्या आप उसी कमरे में हैं और क्या हुआ बताइए।
4: जी नमस्कार सभी, आप सभी साथियों को। मैं, हम लोगों ने कल एक दर्शन, बाबा यहाँ पे भगवान राम के दर्शन के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था कि जो भगवान राम के यहाँ जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हो रही है, जिस तरीके की चीजें यहाँ चल रही हैं, तो भगवान राम से चल के प्रार्थना करेंगे कि आपके नाम पर ये पूरे देश के अंदर भाजपा के लोग आज अपनी दुकान चलाए और पूरा विस्तार किया और भगवान के दरबार में ही चढ़ावा चोरी हो रही है। चढ़ावा चोरी जो माँ, हमारी दादी माँ आंचल ने पैसा लेकर जाती थी, आंचल का भी पैसा इन्होंने छीन लिया। और उसमें हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग सब लोग मिलकर, एक मैं, मेरे साथ डेलीगेशन था जिसमें किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी के सांसद, राकेश राठौर जी सीतापुर के सांसद, हमारे उज्जवल रमण जी प्रयागराज के सांसद और तनुज पुनिया जी बाराबंकी के विधायक, हमारे वीरेंद्र चौधरी, पूर्व MLC हमारे दीपक सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद एपी गौतम जी, हम लोगों ने डेलीगेशन बनाया था चल के भगवान से वहां दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे सदबुद्धि के लिए। तो आज इन लोगों ने, मैं कल शाम को आ गया था यहाँ पर अयोध्या में, रात को इन लोगों ने मुझे होटल पहुंचकर गिरफ्तार किया, वहां हाउस अरेस्ट किया, फिर वहां से जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाकर, पुलिस की गाड़ी में बैठाकर, ये आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर अयोध्या में, वहां रात को गेस्ट हाउस में लाकर रोक गए और पूरी तरीके से इन लोगों ने रात भर परेशान किया। और हम लोग दर्शन करने के लिए कोई जाना चाहते थे तो जाने नहीं दिया। हम लोगों की केवल एक ही सोच है, भगवान राम से दर्शन करेंगे और चल के प्रार्थना करेंगे और सद्बुद्धि हो कि कम से कम जो भगवान के नाम पे आप पूरे देश में विस्तार किए, वहां पर ही आप पैसा खा रहे हैं, वहीं चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये बस हम लोग की इतनी मनसा थी दर्शन करने की।
2: ये स्थिति आ गई है आज की डेट में, भगवान राम लला के दर्शन करना भारतीय जनता पार्टी से पूछ के जाना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले दर्शन करने नहीं आते, अरे कांग्रेस वालों को तुम दर्शन नहीं करने, तुम्हारे बाप का ट्रस्ट है। अब भगवान राम के मंदिर पर भी पहरा होगा, भगवान राम की मूर्ति पर भी पहरा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी चोरी, इनका महापाप, इनकी महानिष्ठा जो है वो खुल गई है। अजय राय जी दर्शन करने जाएंगे, किसी की बाप की औकात नहीं कि उनको रोक ले।
0: All right, Samarth is getting in more details in that story. Samarth, we've heard from the Congress leaders, including the UP Congress President Ajay Rai, who's spoken about the fact that we were there for darshan. Of course, the effort by the opposition is to put the spotlight on the donation scam. They've been under house arrest. What are you learning? What are the police now saying?
5: See, we are reporting from the hotel where the Congress leaders are under the house arrest. That's the Ayodhya Hotel. And first, I'll ask my cameraman Neeraj to show the visuals of the police team gathered out here in the large numbers. As you can clearly see, a lot of policemen from Ayodhya police have gathered here to stop the Congress leaders visiting the Ram Temple as they were planning a padyatra towards the Ram Temple at a time when the SIT inquiry is on in this particular temple town. As you see the visuals of this particular hotel where the congressman was staying. As you can see a lot of people out here. KL Sharma sahab, you are live on India Today TV. My first question to you is, you guys are under house arrest. What's the current situation? What do you want to say about it?
6: नहीं, देखिए कि हम लोग पहले सूचना देके इनको आए थे, कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे नहीं आए हम लोग। हमारे अध्यक्ष जी ने, अजय राय जी ने इनको सूचना दिया कि हमारा एक डेलीगेशन है, भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रहा है। तो इन्होंने दर्शन करने के, कल से हाउस रेस्ट के लिए अजय राय जी अलग कहीं हैं, दूसरे हमारे एमपी अलग रेस्ट किया हुआ इन्होंने, तो मैं रात में पहुंच गया था यहाँ पे, तो पहुंच गया तो पता चला 1:30 बजे इन्होंने होटल के अंदर फोर्स बिठा दी। ये किस बात का डर है इनको, मेरे को नहीं समझ आती। क्या हमारा अधिकार नहीं, हम हिंदू नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है प्रभु श्री राम के दर्शन करने का? या तो ये लिख के लगा दे कि कांग्रेस यहाँ कोई दर्शन नहीं करेगा।
5: Right over there, and whether you will be able to visit the Ram temple today or not.
7: 100% श्योर जाएंगे, और हम लोग कहते हैं हम तो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रेन उतारा के दोबारा चल गए थे। हम पूछना चाहते हैं आखिर क्यों रोका, किस संविधान की धारा में लिखा है कि हम राम जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं? अनुच्छेद 25 कहता है राम जी के दर्शन कर सकते हैं, सरकार उसका उल्लंघन इसलिए कर रही है, चंदा चोरों को बचाना चाहती है, जो चंदा चोरी उसमें पाप हुआ उसे छुपाना चाहती है।
0: And more news coming in. Revered spiritual leader has lashed out over the Chanda Chori allegation, says the trust those who are dedicated to Sanatan. Dhirendra Shastri says Ram Baksa hurt, says it is Sanatan itself that has suffered harm. Those who commit misdeeds while residing in the abode of Lord Ram will face severe punishment. Ravana faced total destruction after abducting Janaki ji. Responsibility for temple management should have been given to only those who were dedicated to Sanatan.
8: भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था, और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड।
0: More news coming in. Maharashtra Assembly Mandir Chori Showdown is what we are reporting on. Opposition is protesting over Ram Mandir theft. MLAs are staging a protest on the Vidhan Bhavan steps. You can take a look at these pictures coming in from the Maharashtra Assembly, where the opposition is demanding a fair probe into the theft. The Ram Mandir record for strict action against the accused. Ram Mandir theft echoes in the Assembly session. Slogans raised against the BJP government. Mandir theft triggers a big political showdown with the opposition putting the spotlight, seeking answers from the BJP government here. Take a look at these images coming in at this point in time from the state of Maharashtra. Images are from the assembly where MLAs are protesting. Let's take a listen. Of the chief minister also entering the house as MLAs of the opposition are protesting, seeking answers from the government on the Ayodhya donation scam. Take a look at these pictures from the Maharashtra Assembly, where this matter has been raised by the opposition, not just in the state of Maharashtra, but by and large, the opposition has put the focus on how the scam has taken place in the revered Ram Mandir and why the BJP is looking the other way is the question that they're asking of the opposition. Ritvik has more. Ritvik, the opposition putting the spotlight on this issue. We also saw a few seconds ago, I think, the chief minister enter the assembly, isn't it? Enter the house.
9: Policemen now are geared up and they have started protesting on the CKS of Maharashtra Vidhan Bhavan. I mean, the ongoing monsoon session against what happened in Rajasthan. Even UBC Sena leader Sanjay Raut has targeted BJP and central government, saying that it was one of the pilot projects and they should even, you know, save such malpractices from happening, prevent malpractices from happening in Ram Mandir. So now even opposition in Maharashtra gearing up to target and to slam BJP and central government or Ashok Ramandir.
0: I'm going to leave it there for the moment. Images, viewers, are from the Maharashtra Assembly. The state of Maharashtra, also the theft at the Ram Temple has found, is being raised by the opposition here, not just at the central level, but also in various states. The focus of the opposition is on the Chanda Chori allegations that are getting probed right now. Well, as a probe in the Ram Mandir Chanda Chori case, startling revelations are coming to light. According to reports, the SBI written to the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust recommending that the counting staff be removed from duty. SBI had detected suspicious activities involving staff engaged in counting donations nearly 3 months before the alleged fraud surfaced and had recommended their removal. Bank management had observed irregularities during the counting process as well, flagged concerns regarding the functioning of certain employees associated with the counting exercise. The alleged embezzlement of Ram Temple donations has entered a critical financial audit phase, with Ayodhya police seeking 5 years of banking records from 7 banks by the 8 arrested accused and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust maintain accounts. Sources say investigators have sought detailed account statements, transaction histories, KYC documents, deposit records and other banking details to reconstruct the final trail and identify any suspicious movement of funds.
5: As the police investigation is on in the alleged embezzlement of Ram Temple donation case, the SBI Nayaghat branch has become a focal point in this particular investigation, as police spent 4 long hours at this particular SBI branch of Ayodhya, from where we are currently reporting. You can clearly see the visuals of the SBI Bank Nayaghat branch out here, where police teams came here and spent around 4 hours. They did questioning of the SBI members, SBI officials, and also looked after the bank details of those accused who are behind the bars, number one, and other Ram Temple Trust officers and employees, to know the sense how the money was spent across these particular banks. It's not just about the SBI. Some other banks have also been put under the questioning part by the police, and further questioning will be held in the days to come. But police spent around 4 hours here. SIT inquiry and the police investigation will take a new turn, as questioning of Champat Rai has just happened yesterday. 3 hour long questioning, where Champat Rai was also in a way got confused in some of the questions while answered few. Now it's the number of Gopal Rao and Anil Mishra next in terms of police questioning. With cameraman Neeraj Kumar and Mayank, Samarth Srivastav for India Today.
10: हमारे यहाँ पे कुछ पीएनबी संबंधित खातों के विषय में जानकारी मांगी गई थी, तो वो खाता हमारे ब्रांच में मेंटेन नहीं था, तो ये बता दिया गया कि किस शाखा में मेंटेन खाता है और वहाँ से अप्रोच किया जाए. बस इतनी सी बात हुई. बस उन खातों की केवाईसी मांगी जा रही थी और स्टेटमेंट मांगा जा रहा था और उन खातों को फ्रीज करना था, तो संबंधित ब्रांच को ये भेज दिया गया है मैसेज, तो वहीं से
11: कुछ खाते हैं.
10: हाँ, पीएनबी खाते हैं, बट हमारी ब्रांच में नहीं है, वो किसी और ब्रांच में है, तो उस ब्रांच को ये कन्वे कर दिया गया है.
0: We'll continue to get you more on that story. For the moment, it's a wrap on this edition. News continues on the other side. Thank you for watching.
12: You are watching India Today.
13: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love, with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
14: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
11: लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख के अंदर दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था, बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है।

0: Hi, good afternoon, and thank you for tuning into India Today. I'm Suesha Sam. Cutting across to breaking news coming in, Punjab Kings batter booked for battery. Shashank Singh, who has denied the assault allegations. This is the latest coming in from Shashank, who said that he did not beat up anyone. Cricketer who's rejected the hostage abuse claims that were made against him. Shashank has said that he was not a crook, possibly came to steal, and that is why he led to what he did. Shashank has also claimed that there's a private video that has been recorded. The cricketer has said that we nabbed him and let him go. That's the latest coming in from Shashank, where, remember, an FIR has been registered against the cricketer of Punjab Kings, Shashank Singh, for allegedly assaulting and verbally abusing Vipendra Singh, a member of the cooking staff. And this is the latest statement that has come in from Shashank, who has gone on to reject all the claims that were made. The Punjab Kings batter, who said that these allegations are not true. He said he did not beat up anyone. Listen into the statement.
1: बावर्ची बोल के आया था, बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था. उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था और वो यहाँ पे आके सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है. भाई, अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंगिंग के फोटोज और वीडियोज क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करने आया था. तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है कुछ चोरी नहीं हुई. हाँ, एक चांदी के गणपति जी हैं जो नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है. बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था. हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, मैं गाली गलौज करने से दो बार कतराता हूँ, तो इसलिए ये सब तो मैं नहीं कह सकता हूँ. जिनको पता है उन्हें पता है, तो मुझे आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन नहीं की जरूरत नहीं है इसके बारे में.
2: उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज़्यादा था तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊंगा तो बता दूं, अभी आज ही आया हूं, बता दूं कल तो चला जाऊं. जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया, मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, मम्मी की तबीयत भी खराब. मेरा फ़ोन छीन लिए, तू आया क्यों? मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा, फ़ोन ले लिए. अब काम तो करना पड़ेगा, एक महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके. तेरी औकात क्या है? मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया, कोई पटवा मुख्यमंत्री है उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे, तू है क्या? मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ. हाले चोरी करने आया मेरा मर्डर? मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ, सर मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फ़ोन लगा के मैं लगा दूँ, सर पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है.
3: थाना रातीबड़ में एक FIR कल पंजीबद्ध हुई है, जिसमें एक फरियादी है, उनके द्वारा मारपीट का, साधारण मारपीट संबंधी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें तीन लोग नामजद आरोपी उसने लिखा है.
4: कौन कौन नामजद है
3: इसमें? शैलेश सिंह सर का है नाम, एक के सुपुत्र का नाम है, ड्राइवर का उसमें नाम लिखित. हाँ, उनके सुपुत्र का नाम, जी हाँ, इसमें है.
4: मैडम, पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से मारपीट की गई है, मोबाइल छीना गया, उसे धाराएं कम लगी हैं.
3: देखिए, मेडिकल कराया गया है पीड़ित का, और जैसे मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है. अगर कोई इसमें गंभीर चोट अगर आती है मेडिकल में, तो उस अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी.
4: मैडम, आगे धारा बढ़ाने की कार्रवाई और आगे क्या कुछ?
3: वो सब में अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं है. अभी जो अभी प्राइमा फेशिया जो चीज़ है उसमें ऐसी कोई गंभीर मारपीट की बात नहीं है.
0: Let me take this to my colleague Ravish Pal Singh, now joining us on the broadcast. Ravish, बहुत contradictory claims आ रहे हैं दोनों तरफ से. अभी FIR लॉन्च की जा चुकी है, आगे क्या?
5: देखिए, अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस जो है वो शैलेश सिंह और उनके जो बेटे हैं शशांक, इनको पूछताछ के लिए बुलाने वाली है. और दरअसल एलिगेशन दोनों साइड से लग रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो विक्टिम है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात का कंफर्मेशन हुआ है कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है. उसके पैर, उसके हाथ, पीठ, चेहरा, सर, यानी शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं. और न केवल चोट के बल्कि मारपीट की वजह से भी कई जगहों पर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें इसकी कंफर्मेशन हुई है कि उसको पूरी तरीके से फिजिकली असॉल्ट किया गया है. और उसने अपनी FIR में जिन दो लोगों के नाम लिखवाए हैं उनके अलावा इनका जो ड्राइवर है शैलेश सिंह का, उसका भी नाम है, और तीनों के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं. हालांकि जो दूसरा साइड है, जो अक्यूज्ड है, उनका साफ तौर पर कहना है, जो आज मीडिया के सामने आया, उनका कहना है कि इसके इंटेंशन काफी गलत लग रहे थे पहले ही दिन से. और उसके बाद जो है जब उन्होंने इसे कन्फ्रंट किया तो इसने उनके साथ पहले बदतमीजी की, जिसके बाद ये मामला जो है इससे आगे तक बढ़ गया। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया टुडे को एक और नई चीज पता चली है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ऐसे किसी कुक के साथ इन दोनों ने इस तरीके का कोई बिहेवियर किया है। इससे पहले भी ऐसा बताया जा रहा है कि एक और ऐसा कुक था जो कुछ साल पहले की बात है, उसके साथ भी किसी तरीके से एक इंसिडेंट सामने आया था। तब भी जो शैलेश हैं, फॉर्मर डीजी हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की शिकायत एक फॉर्मर कुक भी कर चुका है जो उस घर में पहले कुक का काम करता था। तो अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को भी, इस एंगल को इन्वेस्टिगेशन में लेती है या नहीं। लेकिन अभी पुलिस के पास जो फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है विक्टिम का और जो रिपोर्ट आई है मेडिकल की, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये बताने के लिए कि जो आरोप लगाए गए हैं शैलेश, उनके बेटे शशांक और उनके ड्राइवर पर, वो पूरी तरीके से सच है। क्योंकि जो विक्टिम की बॉडी है उसमें कई जगहों पर फिजिकल असॉल्ट के गंभीर निशान देखने को मिले हैं।
0: जी रवीश, फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मीनवाइल लेट्स वंस अगेन लिसन इनटू व्हाट शशांक हैज सेड ऑन दिस मैटर एज ही डिनाइड द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम।
1: बावर्ची बोल के आया था बट वो बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था, उसे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था और वो यहाँ पे आके सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था कि वीडियोस निकाल रहा है, फोटोज निकाल रहा है, मेरे रूम में जा रहा है। भाई अगर आप बावर्ची बोल के आए हो तो आपको किसी के रूम में जाके पर्सनल बिलोंगिंग के फोटोज और वीडियोज क्यों निकालने हैं? तो वो ये सब करने आया था। तो मुझे शक है कि वो एक चोरी के इरादे से आया था और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी तक जितना हमने चेक किया है कुछ चोरी नहीं हुई। हाँ, एक चांदी के गणपति जी हैं जो नहीं मिल रहे हम लोग को, तो उसके अलावा भी और मम्मी और दीदी मेरी चेक कर रही हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ है। बट मेरे ख्याल से वो उस इरादे से आया था। हाथापाई तो बहुत दूर की बात है, मैं गाली ग्रोज करने से दो बार कतराता हूँ, तो इसलिए ये सब तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जिनको पता है उन्हें पता है, तो मुझे आई थिंक कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है इसके बारे में।
2: उनका व्यवहार, सबको गाली दे रहे हैं, इतना काम ज़्यादा था तो मैं डिसाइड किया कि सर काम नहीं कर पाऊँगा तो बता दूँ, अभी आज ही आया हूँ बता दूँ, कल तो चला जाऊँ। जब मैं कल बताने के लिए उनके सुबह गया, जैसे ही किचन में गया मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर जाऊंगा, मम्मी की तबीयत भी खराब, मेरा फ़ोन छीन लिए, तू आया क्यों, मेरा मर्डर करने आया है, चोरी करने आया है, तेरा जांच कराऊंगा, फ़ोन ले लिए, अब काम तो करना पड़ेगा, एक महीना तो काम करना ही करना है, कुछ भी करके तेरी औकात क्या है। मेरे यहाँ कमलनाथ को मैंने झुका दिया, कोई पटवा मुख्यमंत्री है उसको बोल रहे हैं, बोले तेरे रीवा के सारे एसपी मेरे यहाँ झाड़ू लगाते थे, तू है क्या, मैं गोली सबको ठाए ठाए गोली मारता हूँ, तेरे जैसे को तो कितनों को गोली मारा हूँ, हाले चोरी करने आया मेरा मर्डर, मैं सर कुछ नहीं करने आया हूँ, सर मेरे दरोगा से पूछ लीजिए, फोन लगा के मैं लगा दूँ, सर पूछ लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं है।
0: With that, it's a wrap on this edition of the news. We step into a very short commercial break. We'll be back on the other side with the very latest. Stay tuned.

0: Shifting focus now to the alleged Ram Mandir donation scam probe that continues to widen, with the probe now extending from the temple premises to the banking system. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra, who have resigned from their positions on moral grounds, they have been grilled by the cops. India Today has accessed exclusive information about the questioning of Champat Rai. The former office bearer of the trust was grilled for over 3 hours. Sources say Rai was extensively questioned on the functioning of his trust and the management of donations received. During the probe, Champat Rai strongly dismissed all charges of any wrongdoing. He, however, admitted to employing needy individuals as part of the trust's activities. In the latest development, radio maintenance officer Arjun Dev, who spent 17 years in Ayodhya and oversaw the temple's CCTV network, wireless systems and donation counting room security, has been transferred to Gorakhpur. The SIT had questioned his role, saying his involvement went beyond official duties. Amid the ongoing political slugfest, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath lashed out at the opposition and said that those who denied the existence of Lord Ram before 2017 are now raising their voice for Ram Bhakts.
1: Aaj Ram ki bhakti ki vakalat kaun kar raha hai? Aaj Bhagwan Ram ki bhakti ki duai kaun de raha hai? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी।
2: भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था, और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा।
3: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया, तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है।
0: And well, top Ayodhya seer who targeted the Mandir Trust, Acharya Dharam Das, in a scathing attack on Champat Rai, where the Hanuman Nagar Mahant has said that the trust of Ram devotees has been failed. Mahant said that Yogi Adityanath will not spare any Chanda Chor, but he's made an even bigger claim where he said that more names are yet to emerge. Listen in to what he said, but let's listen in.
4: चंदा चोरी मामले में साधु संतों में आक्रोश है, सब सवाल कर रहे हैं आखिर श्री रामचंद्र जिस लड़ाई में सालों बीत गए, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, सबसे ज्यादा चिंतित वो हैं। हमारे साथ आचार्य धर्मदास जी हैं जो सेवा समिति श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष भी हैं और हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर महाराज जी। महाराज जी, आप लोगों ने पूरा वो समय देखा जब इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई, बहुत शुरुआती दौर जब आप लोग बहुत संघर्ष में रहे, सारी चीजें हुई। अब जब ये घटना होती, मंदिर बन गया, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, सारी चीजें हुई, जब दान चोरी की घटना सामने आती है, ये मालूम पड़ता है जो श्रद्धालु दूर दूर से आकर अपनी श्रद्धा भाव से रामचंद्र जी को कुछ अर्पित कर रहे हैं, वही गायब हुआ जा रहा है, तो आपका वो संघर्ष और आज का वो दिन कैसे देखते हैं?
5: ये गलत है। देखो, चोरी चीज या चोरी गलत काम गलत है, अच्छा काम अच्छा है। तो चोरी के शब्द गलत हैं, आराम के यहाँ चोरी के शब्द गलत हैं। राम मंदिर में चोरी होना ये एक अपराध है, एक अक्षम्य अपराध है। है कि नहीं, एक अपराध होता है, एक अक्षम्य अपराध होता है, तो इस सब अक्षम्य अपराध है। ये चोरी जो भी किया हो तो हम लोग तो देखे नहीं है, सुने सुनाए पर क्या कह सकते हैं, लेकिन जो सुनाई पड़ता है ये गलत है। ऐसा दुर्घटना नहीं होना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। जो कर किया है उस पर मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर के एसटीआई जांच बैठाए हैं। वो देखिए क्या करते हैं, 8 लोगों के तो भेजे और लोगों के सब जाने की तैयारी है, और नहीं होगा तो उन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा।
6: और लोग की आपने बात की कल चंपत राय से, 3 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है, अनिल मिश्रा से भी होगी, गोपाल राव से भी होगी।
5: चीटी है काटने वाली। हाँ तो देखो, गोपाल राव के तो हम लोग जानते ही नहीं है, जानते भी नया नया आए थे वो सब, एक लुटेरा गैंग। देखिए जो बहुत मीठा होता है बाबा, ऐसे ऐसे करता है, उसको का कर देगा कोई ठिकाना नहीं है, तो उस सब के विषय में हम नहीं जानते हैं। चंपत राय अपने हाथ से उठाने वाले नहीं है, जो भी उनका आदेश होगा बिना आदेश के उनका के यहाँ। जितने हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये, इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
6: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
5: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा भैया से चोरी भया, तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
6: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
5: हाँ,
6: कौन हो सकता है?
5: देखिए चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए, चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: And well, ahead of Congress MP's visit to Ayodhya, UP Congress President Ajay Rai has been placed under house arrest at a hotel in Ayodhya. India Today exclusively spoke to Ajay Rai. Listen in to what he said.
7: ये मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ, और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर हम ये दरवाज़ा सामने ये दरवाजा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। ये देखिए पूरा इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के एक पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, और ये बाहर के लॉन है, और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है, और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं खड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा VIP सुविधा देते।
1: वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
8: We are reporting from the hotel where the Congress leaders are under the house arrest. That's Ayodhya Hotel. And first, I'll ask my cameraman Neeraj to show the visuals of the police team gathered out here in the large numbers. As you can clearly see, a lot of policemen from Ayodhya police have gathered here to stop the Congress leaders visiting the Ram Temple as they were planning a padyatra towards the Ram Temple at a time when the SIT inquiry is on in this particular temple town. As you see the visuals of this particular hotel where the congressman was staying, as you can see, a lot of people out here. KL Sharma Saab, you are live on India Today TV. My first question to you is, you guys are under house arrest. What's the current situation? What do you want to say about it?
9: नहीं देखिए कि हम लोग पहले सूचना देके इनको आए थे. कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे नहीं आए हम लोग. हमारे अध्यक्ष जी ने, अजय राय जी ने इनको सूचना दिया कि हमारा एक डेलीगेशन है, भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ रहा है. तो इन्होंने दर्शन करने के कल से हाउस अरेस्ट के लिए अजय राय जी अलग कहीं हैं, दूसरे हमारे एमपी अलग अरेस्ट किया हुआ इन्होंने. तो मैं रात में पहुंच गया था यहाँ पे. तो पहुंच गया तो पता चला 1:30 बजे इन्होंने होटल के अंदर फोर्स बिठा दी. कि ये किस बात का डर है इनको, मेरे को नहीं समझ आती. क्या हमारा अधिकार नहीं, हम हिंदू नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है प्रभु श्री राम के दर्शन करने का? या तो ये लिख के लगा दे कि कांग्रेस यहाँ कोई दर्शन नहीं करेगा.
8: Be the next step by you, because I'm seeing a lot of leadership of yours is standing right over there.
9: They are coming with me. They are my constituent people. They are coming with me.
8: You can clearly see the visuals out here. The roads of Jai Shri Ram out here by the Congress leadership here in Ayodhya as they are raising the slogans of Jai Shri Ram. Now it's going to be worth seeing whether the Congress leadership would be able to visit Ram Temple or not.
0: And well, as the probe in the Ram Mandir Chanda Chori case, startling revelations that are coming to light. According to reports, SBI had written to Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust recommending that the counting staff be removed from duty. SBI had detected suspicious activities involving staff engaged in counting donations nearly 3 months before the alleged fraud had surfaced and had recommended their removal. Bank management that had observed irregularities during the counting process, and they'd also flagged concerns regarding the functioning of some employees associated with the exercise. The alleged embezzlement of Ram Temple donations that has entered a very critical financial audit phase, with Ayodhya police seeking 5 years of banking records from 7 banks, where the 8 arrested accused and the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust maintain accounts. Sources said that investigators have sought detailed account statements, transaction histories, KYC documents, deposit record and other banking details to reconstruct the financial trail and identify any suspicious movement of funds.
8: As the police investigation is on in the alleged embezzlement of Ram Temple donation case, the SBI Nayaghat branch has become a focal point in this particular investigation, as police spent 4 long hours at this particular SBI branch of Ayodhya, from where we are currently reporting. You can clearly see the visuals of the SBI Bank Nayaghat branch out here, where police teams came here and spent around 4 hours. They did questioning of the SBI members, SBI officials, and also looked after the bank details of those accused who are behind the bars, number one, and other Ram Temple Trust officers and employees, to know the sense how the money was spent across these particular banks. It's not just about the SBI. Some other banks have also been put under the questioning part by the police, and further questioning will be held in the days to come. But police spent around 4 hours here. SIT inquiry and the police investigation will take a new turn, as questioning of Champat Rai has just happened yesterday. 3-hour-long questioning, where Champat Rai was also, in a way, got confused in some of the questions while answered few. Now it's the number of Gopal Rao and Anil Mishra next in terms of police questioning. With cameraman Neeraj Kumar and Mayank Samarth Srivastava for India Today.
0: And we cut across to more breaking news coming in on Ayush Malik. Details that will shortly flash on your screens of Ayush Malik and the big twist in the UP love jihad shocker. UP businessman's son Ayush Malik, who has re-embraced Hinduism. Ayush's father has said that he's happy that his son has embraced Hinduism again. Ayush's father saying that Ayush performed all the rituals with him. It's a ghar vapsi. for the businessman's son Ayush Malik. All of this on camera, where Ayush performed Hindu rituals and prayers. Ayush said that he could not see his family in distress. Ayush was forced to convert by gym trainer Chandni, is what he had claimed. Gym trainer and the father, who were eyeing Ayush's father's money. Chandni Qureshi and father Islam, who forced Ayush to convert. Ayush was taken to Delhi to convert to Islam. He was brainwashed by his lover, is what he has claimed. Ayush converted to Islam. Ayush became Muhammad Ali after love jihad happened to him, is what he has said. Cops have arrested Chandni Qureshi and her father Islam over love jihad. Let's listen in.
10: मेरा नाम आयुष मलिक. मैं इस्लाम में चला गया था. मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना.
11: सामने मेरे समक्ष हनुमान जी हैं. मैं इनके सामने नमन करता हूँ कि मेरा परिवार बचा दिया और मैं हमारी जिंदगी बचा दी. बच्चे का घर वापसी के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ.
12: बेटा कैसा है अभी आपका? क्या कर रहा है?
11: बिल्कुल स्वस्थ है.
12: पूजा पाठ करा? मस्जिद तो नहीं जाता?
11: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया. आपके सामने फोटो है, वो सत्य है. बिल्कुल जो है वो सब सत्य है. मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ.
0: With that, it's time for us to sip into a very short commercial break. On the other side is our special segment In the Club, where you get to watch all that is breaking news in the world of entertainment. Do stay tuned to India Today. No.
13: Oh, no.
14: Welcome to Get Real.
13: I got something to say.
14: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
13: Oh my God.
15: It's got to be deliciously desperate.
13: Why do these girls forget him?
16: Well, she has a soft spot for troubled men.
15: Boo bloody who?
14: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
13: Love runs deeper than we know.
14: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
17: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. यू
18: सोच बदलो और बैंक भी.
19: योर रोड मैप टू इंडियाज बेस्ट कॉलेजेस इज हियर. इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेजेस सर्वे 2026. फ्रॉम कॉलेजेस विद एक्सेप्शनल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स टू टॉप प्राइवेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, इमर्जिंग कैंपसेस एंड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन. Discover the institutions shaping tomorrow's leaders. India Today Best Colleges Survey 2026. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now and get 500 rupees off with code COLLEGE26.

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
0: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
2: Learn more at APGE.com.
3: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
4: You are watching India Today.
5: Thank you for staying with India Today. I'm Suresha Samth, and we'll now get you details of the alleged Ram Mandir donation scam probe that continues to widen, with the probe now extending from the temple premises to the banking system. Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra, who have resigned from their positions on moral grounds, they have been grilled by the cops. India Today has accessed exclusive information about the questioning of Champat Rai. The former office bearer of the trust was grilled for 3 hours. Sources say Rai was extensively questioned on the functioning of the trust and the management of donations received. During the probe, Champat Rai dismissed all charges of any wrongdoing. He, however, admitted to employing needy individuals as part of the trust's activities. In the latest development, radio maintenance officer Arjun Dev, who spent 17 years in Ayodhya and oversaw the temple's CCTV network, wireless systems and donation counting room security, has been transferred to Gorakhpur. The SIT has questioned his role, saying his involvement went beyond official duties. Amid the ongoing political slugfest, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has lashed out at the opposition. He said that those who denied the existence of Lord Ram before 2017 are now raising their voice for Ram Bhakts. Listen in.
6: Aaj Ram ki bhakti ki vakalat kaun kar raha hai? Aaj Bhagwan Ram ki bhakti ki duhai kaun de raha hai? 2017 ke pehle jo jaise Ram bolne par laathi maarte the. 2017 ke pehle जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं. ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. आपके वोट बैंक की ताकत है. अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी.
7: भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे. रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था, और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा.
8: जब ये घटना होती, मंदिर बन गया, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, सारी चीजें हुई, जब दान चोरी की घटना सामने आती है, ये मालूम पड़ता है जो श्रद्धालु दूर दूर से आकर अपनी श्रद्धा भाव से रामचंद्र जी को कुछ अर्पित कर रहे हैं, वही गायब हुआ जा रहा है, तो आपका वो संघर्ष और आज का वो दिन कैसे देखते हैं?
9: ये गलत है. देखो, चोरी चीज या चोरी गलत काम गलत है, अच्छा काम अच्छा है. तो चोरी के शब्द गलत है, राम के यहाँ चोरी के शब्द गलत है. राम मंदिर में चोरी होना ये एक अपराध है, एक अक्षम्य अपराध है कि नहीं? एक अपराध होता है, एक अक्षम्य अपराध होता है. तो इस सब अक्षम्य अपराध है. ये चोरी जो भी किया हो तो हम लोग तो देखे नहीं है, सुने सुनाए पर का कह सकते हैं. लेकिन जो सुनाई पड़ता है ये गलत है, ऐसा दुर्घटना नहीं होना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। जो कर किया है उस पर मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर के एसटीआई जांच बैठाए हैं। वो देखिए क्या करते हैं, 8 लोगों के तो भेजे और लोगों के सब जाने की तैयारी है, और नहीं होगा तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा।
10: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है।
11: आप लोगों की धूल आंख में झोंकने के लिए ये मीटिंग करिए, वो मीटिंग करिए, देश का क्या हाल है? विदेश नीति चौपट, उन्होंने खड़े होकर कहा सर मैं लाल लेजर वाली आंखों की रील बनाता हूं। मोदी जी का ज्यादा रील बन बनाओ, रील गुरु मैं हूं, मैं बनाऊंगा रील, विश्व गुरु मैं हूं। तो विदेश नीति चौपट है, धर्म और आस्था का जो प्रहार हो रहा है वो सब देख ही रहे, आप मीटिंग खेलते रहिए, देश देख रहा है क्या हो रहा है।
12: एक एक दिन में 5 लाख 6 लाख 10-10 लाख तक प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोग आते थे और पूरे देश के आते थे। ये मामला राष्ट्रव्यापी हो गया है और राम मंदिर से ही इनकी देश में सरकार बनी थी और राम मंदिर से ही इनकी सरकार जाएगी। पहले जाएगी उत्तर प्रदेश में 27 में, बहुत क्योंकि आज अगर विश्वास किसी पर
13: भक्ति के नाम पर जिस प्रकार लोगों ने गबन किया, धोखाधड़ी की, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि कई बार इस तरह के सवाल उठे जमीन को लेकर, चंदे को लेकर के, लिपापोती की कोशिश हुई। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की चीज आज से पूर्व नहीं हुई थी और अभी भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मार्क माय वर्ड्स, बड़ी मछलियां बचा ली जाएंगी, हाँ छोटे मांगुर कबई पकड़े जाएंगे।
5: And well, the probe into the Sabarimala gold theft is once again back in the spotlight. The special investigation team has submitted an interim report before the Kerala High Court, claiming it has gathered material linking two former senior Travancore Devaswam board officials to the alleged conspiracy. Former TDB president P.S. Prasanth and former board member A. Ajit Kumar have now been named by the SIT. The probe team told the High Court that it has collected overwhelming material establishing the alleged role of former executive officer Murari Babu, sponsor Unnikrishnan Potti, Chennai-based contractor Pankaj Bhandari, P.S. Prasanth, Ajit Kumar, former Tantri, Kandararu Rajivaru and former Thiruvabharanam Commissioner Rajilal. Two left Democratic Front leaders are among the accused, while P.S. Prasanth is a CPIM leader. A. Ajit Kumar belongs to CPI. In its order, the Kerala High Court noted that SIT's findings that the accused conspired to remove the original gold cladding from the Dwarapalakam idols, replace it with a thin layer of gold plating and misappropriate the remaining gold. The SIT further informed the court that its investigation into the alleged gold misappropriation from the temple door frames is complete. Meanwhile, BJP is ratcheting up pressure on the UDF government to deliver justice in the case and act against the accused. Moving on, WhatsApp will finally allow users to go by their usernames instead of their phone numbers, closing a long-standing privacy gap on the app used by more than 3 billion people. The Meta-owned platform announced that it has begun letting users reserve unique usernames before a wider rollout later this year. So is this a big boost for privacy? We're getting you all the details in this report.
14: WhatsApp is taking one of its biggest steps yet toward protecting user privacy, with the Meta-owned platform officially rolling out a new usernames feature that lets people chat without ever revealing their phone number. Instead of relying on mobile numbers to connect, WhatsApp's 3 billion account holders will soon be able to exchange unique usernames to start the conversation. Worried about copycats? Don't be.
15: While usernames can run up to 35 characters with few restrictions, WhatsApp is locking down names tied to celebrities and public figures, so don't expect a flood of fake Donald Trumps sliding into your chats. And if things still go sideways, blocking and reporting tools remain firmly in place. Username reservations have already begun rolling out globally from June 29, giving users a head start on securing their preferred name before the feature goes fully live. The move is being seen as a significant shift for WhatsApp, signaling a broader push by the company to give users more control over their personal information in an increasingly privacy-conscious digital landscape.
16: The room, like a landlord.
17: Excuse me, can I get the check?
18: Me?
17: Oh, so it's a privacy thing?
18: Yeah.
19: You could spell your name backwards.
20: Mama's boy.
18: Mom.
20: Well, it's true.
18: I've got a reputation.
15: WhatsApp isn't breaking new ground here. It's playing catch-up. Telegram has let users hide behind usernames for years. While Signal, long the gold standard for privacy, quietly rolled out its own username feature in 2024. So is this a privacy revolution or window dressing? Oh, so for 3 billion users, it's a step in the right direction. But for the privacy purists already on platforms like Signal, it's a case of WhatsApp finally arriving at a party everyone else has been at for years.
21: So number mat do. Because WhatsApp laya ek naya feature, usernames. Bas apna username batao aur apni privacy pe apna control bada.
15: Bureau Report, India Today.
21: Username create kar lo. Make your move.
5: And that's all that we can pack for you in this edition of the news. Thank you so much for watching. My colleague Pooja Shali joining you on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.
4: You are watching India Today.

आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख चंदा दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था, बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है।

0: क्या आपकी कॉफी में दूध है?
1: कौन सा दूध?
0: गाय का दूध है।
1: आपकी चाय में दूध है?
0: भैंस का दूध है।
1: बकरी का दूध?
0: क्या आपको भी काउ मिल्क से डिस्कम्फर्ट रहता है? यू गेट रिफ्लक्स और यू फील ब्लोटेड और यू फील लाइक विंड इज ट्रैप्ड इन योर स्टमक? वेल, आपके लिए बहुत सारी प्लांट बेस्ड ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन कौन सा चूज करें क्योंकि इतने ऑप्शन है। देर इज सोया मिल्क, देर इज आमंड मिल्क, देर इज ऑल्सो ओट मिल्क। न्यूट्रिशनली ये तीनों बहुत ही डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, तो हमने इसके बारे में न्यूट्रिशन रिसर्चर डॉक्टर सीमा गुलाटी से बात करी है। अ क्विक फन फैक्ट, अ लॉट ऑफ दीज ड्रिंक्स आर मार्केटेड एज ड्रिंक्स और बेवरेजेस रादर देन मिल्क, पर वो सिर्फ एक रेगुलेशन का डिफरेंस है। दैट स्टार्ट्स द प्रोटीन चेक। सो सोया मिल्क, दिस इज द अनडिस्प्यूटेड चैंप। इट्स गॉट अबाउट 7 to 8 grams पर कप, matching almost the dairy quantity as well. Oat comes second, but it lags far behind. It just got about 2 to 3 grams. But almond is the one with the least amount of protein, with less than a single gram per cup. But it's not just about protein. Let's look at calories. If you're trying to stay calorie deficit, unsweetened almond milk wins, with typically around 30 to 40 calories per cup. Soy milk, on the other hand, comes second with about 80 to 90 calories. But oat milk, this is very calorie dense. It's got about 120 to 130 calories per cup. And also remember that oat milk is not just high in calories. It is also very rich in carbohydrates because it's made from a grain. Remember, one cup of oat milk has about 15 to 16 grams of carbohydrates. Soy milk, on the other hand, has around 4 grams of carbohydrates for the same quantity. But almond milk has just about 1 gram of it. Of course, बात कर लेते हैं, आउट ऑफ द थ्री द सोय मिल्क इज द चीपेस्ट। 1 liter ऑफ अनफ्लेवर्ड बेसिक वर्जन शुड कॉस्ट यू अबाउट 120-130 to about 170 bucks. 1 liter ऑफ ओट मिल्क शुड कॉस्ट यू अराउंड 250 to 270 rupees. एंड 1 liter ऑफ आमंड मिल्क, ये सबसे महंगा है, विल कॉस्ट यू बिटवीन 250 to 320 rupees. तो हेल्थ वेल्थ वर्डिक्ट क्या है? इफ द मेन मोटिव ऑफ यू स्विचिंग टू प्लांट बेस्ड मिल्क इज फिटनेस, पिक सोय मिल्क। इफ यू आर इन कैलोरी डेफिसिट एंड योर मेन एम इज fat loss, pick almond. Now there is a reason why so many people pick oats milk despite being very high in calorie and despite giving you a post meal glucose spike. It is a great source of beta glucan. हमने इसके बारे में एक वीडियो में बताया था, आप उसको वापस जाके देख सकते हैं। But actual verdict तो तब आता है ना जब आप पीते हैं इसको। So what about the taste? Remember, सबसे neutral taste जो है वो oat milk का होता है, but like we said, बहुत calorie dense है। उसके बाद आता है almond milk का and उसके बाद soy milk. But whichever one you are picking, just make sure you buy the unsweetened calcium and vitamin D fortified versions without additives and always check the nutrition labels. आपके फ्रिज में कौन सा दूध है उसके बारे में हमें कॉमेंट्स में बताइए।
2: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. England takes on Democratic Republic of the Congo in Atlanta, and the USA battles Bosnia and Herzegovina in Santa Clara. Both England and the USA are huge favorites. England is -1,000 to qualify for the next round, and USA is -630. This has been your official Odyssey Sports match day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
4: आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख चंदा दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था, बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है।

एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

0: ये स्थिति आ गई है। आज की डेट में भगवान राम लला के दर्शन करना भारतीय जनता पार्टी से पूछ के जाना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले दर्शन करने नहीं आते, अरे कांग्रेस वालों को तुम दर्शन नहीं करने, तुम्हारे बाप का ट्रस्ट है। अब भगवान राम के मंदिर पर भी पहरा होगा, राम भगवान राम की मूर्ति पर भी पहरा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी चोरी, इनका महापाप, इनकी महानिष्ठा जो है वो खुल गई है। अजय राय जी दर्शन करने जाएंगे, किसी की बाप की औकात नहीं कि उनको रोक ले।
1: ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले क्यों नहीं गए? सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं।

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
2: शाबाश।
0: और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। 37। आप कितना लाएंगे महाराज?
3: Co-powered by Sharda University, the world comes together at Sharda. Where are you?
4: Suzlon, good energies that work.

0: Welcome back. A life-saving kidney transplant should depend on medical urgency, not an administrative deadlock. But at Jaipur's SMS Hospital, families, patients wait while bureaucracy takes its course.
1: A locked room, missing files, and life-saving kidney transplants on hold. At Jaipur's biggest government hospital, the Sawai Man Singh Hospital, patients say bureaucracy and not disease is now their biggest enemy. 11 kidney transplants have reportedly remained stalled since May 31st after the retirement of the nephrology unit head. The reason, families claim, is shocking. Patient files locked inside the retired doctor's room.
2: ये डॉक्टर धनंजय अग्रवाल का कमरा है जो नेफ्रोलॉजी के यूनिट हेड थे 31 मई को रिटायर हुए हैं 80% नेफ्रोलॉजी के केस यही किया करते थे मगर रिटायरमेंट के बाद दूसरे डॉक्टर केस करने के बजाय मरीजों को कहने लगे कि कमरे पर ताला है इसलिए हम आपका केस नहीं कर सकते हैं
1: पेशेंट्स देयरफॉर से दैट एवरी फॉर्मेलिटी हैज बीन कंप्लीटेड एनओसी इज क्लियर्ड पुलिस वेरिफिकेशन डन Donors declared fit, yet life-saving surgeries remain out of reach because the files cannot be accessed.
3: File हमने उनको सब जमा करी, report सब जमा करा दी, NOC भी आ गई, हमारी police verify भी आ गई, सब हो गया है. बस ये अब operation नहीं हो रहा है, बस file अंदर पड़ी ऐसे बता रहे हैं.
4: Documents तो एक डेढ़ महीने के लगभग पहले ready हो गए थे, वो transplant होने वाला ही था, तो इनकी मम्मी के लिए वो ब्लड की कमी आ गई इसलिए वो ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ फिर आधार धनंजय सर रिटायर हो गए इसलिए अभी तक बैठे हैं अब कब होगा ये हमें पता नहीं
1: फैमिलीज क्लेम दैट ट्रैप्ड इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ डायलिसिस व्हाइल वेटिंग फॉर द सिस्टम टू लिटरली अनलॉक द फ्यूचर फॉर मेनी एवरी पासिंग डे मींस अनदर डायलिसिस सेशन एंड अनदर डे ऑफ अनसर्टेनिटी
5: यहाँ कमरा किराए लेकर रहते हैं दो टाइम हॉस्पिटल जाए रहते हैं डायलिसन करवा लेते हैं एक दिन छोड़ रहे एक दिन और जो दिक्कत आती है तो हम बताते हैं ट्रीटमेंट कुछ मिल जाता है बस फिर ही काम सर हम तो फाइल कंप्लीट होने के बाद में इंतजार ही कर रहे हैं दो महीने से भाई अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा
1: द डॉक्टर इन चार्ज डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेइंग द फाइल्स वर नेवर हैंडेड ओवर एंड इट्स नॉट हिज जॉब टू ट्रेस रिकॉर्ड्स
6: फाइलें आने का भी कोई तरीका होता है कि हम तो जो रखते थे वो पेशेंट्स के पास रहती थी हमारी फाइलें तो अब वाली जो फाइल्स थी वो पता नहीं कैसे कहाँ मिसप्लेस हो गई थी वो मेरे को भी नहीं पता थी बट वो मेरे पास नहीं थी मेरे पास ना किसी ने मेरे को इन्फॉर्म किया था ना मेरे पास वो फाइल्स थी
1: बट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से द रूम कुड बी ओपन सून
2: नहीं वो तो कमरे की बात थी कि कमरे में ताला है पर वो जो मरीजों का इलाज है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है और वो फाइलें तो डुप्लीकेट होती हैं फाइलें तो उपलब्ध थी और कमरा भी आज खुल जाएगा
1: द कंट्रोवर्सी डजंट एंड देयर फैमिलीज आल्सो एलिज दैट सम गवर्नमेंट डॉक्टर्स स्पेंड लिमिटेड आवर्स एट एसएमएस हॉस्पिटल व्हाइल प्रायोरिटाइजिंग देयर वर्क इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन जयपुर बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इट्स नॉट जस्ट किडनीज दैट आर फेलिंग पेशेंट्स एलिज द सिस्टम हैज फेल्ड देम टू एंड अंटिल दैट चेंजेस Every delay could come at a devastating cost. With Sharad Kumar in Jaipur, Bureau Report, India Today.
0: Here's another note to our debilitating health system in Rajasthan. There are only 6 nephrologists, government impaneled, in government hospitals across the entire state of Rajasthan. Having said that, there has been impact of the India Today story. The Office of Nephrology Unit at Jaipur's SMS Hospital has finally been opened. The process for kidney transplants for patients has finally commenced after 5 months in waiting. India Today coverage has exposed the apathy and a deepening healthcare crisis at Jaipur Sawai Man Singh Hospital, where 11 kidney transplant cases remain stalled ever since the 31st of May. Following the retirement of the head of nephrology unit. All it took was one story on India Today. And finally, 11 cases will be heard, 11 lives possibly saved. A quick break on that. Thank you for joining us.

आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख चंदा दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था, बताइए, जोड़ कर देख लीजिए कहां है।

0: new political entrants. With Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.
1: The NDA is facing a growing accommodation challenge ahead of a possible cabinet reshuffle, with multiple political blocs now seeking representation. The first pressure point is the TMC rebel group, currently led by Kakoli Ghosh Dastidar, where several MPs are reportedly seeking ministerial positions after aligning with the NDA through NCPI, although that recognition by the Lok Sabha Speaker is yet to happen. The second is Raghav Chadda and other newly aligned leaders of the Aam Aadmi Party, whose entry into the BJP fold had happened just a few weeks ago. And adding to this is the strengthening position of the Shinde-led Shiv Sena faction, where six additional rebel MPs have taken their tally to 13 MPs, significantly boosting its bargaining power. And the talks of Eknath Shinde's son, Shrikant Shinde, being possibly accommodated if there is a reshuffle that takes place. Joining me on the show tonight, Himanshu Mishra and Piyush Mishra. Himanshu, coming to you first. The NDA, this is an NDA government, very different from the first Modi cabinet and also the second Modi cabinet of 2019. In this time, do you see the alliance partners and also the recent breakaway groups like the TMC, also the Aam Aadmi Party, being accommodated, or perhaps a cabinet berth for Eknath Shinde's son?
2: देखिए बिल्कुल मारिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 2014 में जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था और आज के कार्यकाल में थोड़ा अंतर है। 2024 में 240 सीटें जीती, लेकिन तब आपने देखा होगा कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको रिपीट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो थे जेडीयू और टीडीपी के जो मंत्री थे उनको इंडक्ट किया गया, चिराग पासवान को इंडक्ट किया गया, उनके चाचा बाहर हो गए। तो एक तरीके से लबोलबाप कैबिनेट के अंदर अलायंस पार्टनर को जगह दी गई। एकनाथ शिंदे ग्रुप को जो के साथ साथ जो प्रताप राव यादव है उनको इंडक्ट किया गया। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी बदली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाया है। टीएमसी के जो रेबल्स एमपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक उनका जो गुट है एनसीपीआई में, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को मर्जर किया है, वहां उसको लेकर अभी तक स्पीकर की फाइनल रूलिंग नहीं आई है, जजमेंट नहीं आया है। तो ऐसे में वहां से कौन मंत्री होगा? काकुली घोष दस्तवार होंगी, संदीप सुदीप बंदोपाध्याय होंगे या कोई और होगा। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो श्रीकांत शिंदे तीसरी बार के सांसद है, प्रताप राव यादव वहां से मंत्री हैं, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। लेकिन अगर उनके 13 एमपी हुए हैं, जेडीयू से एक सीट ज्यादा उनके पास है, जेडीयू पे 12 एमपी है, जेडीयू पे एक कैबिनेट एक एमओएस है, तो इस लिहाज में अगर देखेंगे तो अब उनको एक कैबिनेट एकनाथ शिंदे ग्रुप को और एक एमओएस चाहिए। अब कैबिनेट अगर श्रीकांत शिंदे आते हैं तो नए जो फैक्शन टूट कर आया है यूबीटी से उनमें से किसी को बनाया जाएगा या प्रताप राव यादव जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अलायंस के साथ भी जो है वो डिस्कशन चल रहा है। अगर आप एकनाथ शिंदे को सीटें देंगे तो दूसरी तरफ आपको एनडीए में जेडीयू और टीडीपी ये जरूर चाहेगी कि वो भी अपने जो कोटा है, जो उनकी रिजर्व सीट्स है, एक कैबिनेट और एक एमओएस, उसको और ज्यादा गेन किया जाए। अजीत पवार फैक्शन है, वो जरूर चाहेगा कि उनके यहाँ से कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई इंडक्ट हो। तो ये तमाम चीजों को लेकर
1: इवन अ बेटर बर्थ, इवन अ मोर प्लम पोर्टफोलियो इज व्हाट द जेडीयू में आस्क फॉर, और इवन यू नो यू हैव अ सिविल एविएशन मिनिस्टर फ्रॉम द टीडीपी, दे कुड आस्क फॉर अ बेटर पोर्टफोलियो ऑल्सो। सो पीयूष, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन अहेड। वी आर लुकिंग एट द अलायंस रिप्रेजेंटेशन। द क्वेश्चन इज ऑल्सो दैट वाई शुड एन एनसीपीआई बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? यू नो if yes, if even if Kakoli Ghosh Dastidar or Sudeep Bandyopadhyay, whosoever emerges as the face of this group, but they have merged with a political party which already exists, so there is that dilemma that will be there before the government.
3: Well, Maria, sources have confirmed to us that this dilemma continues to be there. And while we were in talks with the top leadership of

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: ए यू
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ये स्थिति आ गई है। आज की डेट में भगवान राम लला के दर्शन करना भारतीय जनता पार्टी से पूछ के जाना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले दर्शन करने नहीं आते, अरे कांग्रेस वालों को तुम दर्शन नहीं करने, तुम्हारे बाप का ट्रस्ट है। अब भगवान राम के मंदिर पर भी पहरा होगा, राम भगवान राम की मूर्ति पर भी पहरा होगा। क्यों? क्योंकि इनकी चोरी, इनका महापाप, इनकी महानिष्ठा जो है वो खुल गई है। अजय राय जी दर्शन करने जाएंगे, किसी की बाप की औकात नहीं कि उनको रोक ले।
1: ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले क्यों नहीं गए? सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं।

आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो राम के नाम के ऊपर लूट कर रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख चंदा दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। 2022 में हुआ था, बताइए, जोड़कर देख लीजिए कहां है।

0: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पर मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11, 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे. मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advance and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IST में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी. तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
0: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advance by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

एक न्यूज आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अयोध्या में जो घपला चल रहा था, तीन चार महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुशंसा की कि जो काउंटिंग स्टाफ है उसको हटाया जाए, लेकिन उस सलाह को, उस अनुशंसा को नजरअंदाज किया गया, जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं, वो दिल्ली में है या नागपुर में, ये बहुत जल्दी पता चलेगा, जो चोर को वहां बचा रही थी और शायद आगे भी बचा रही है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युद्ध खत्म भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का कम भी हो जाए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। हम बार बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर, निम्न वर्ग पर, सब पर जो बर्डन है, जो वजन है, जो बोझ डाला जा रहा है, आपकी गलत नीतियों का बोझ है, उसको आप वापस लीजिए।

0: कितने आदमी लाए हो?
1: सरदार, सरदार टीएमसी के 20 सांसद और 58 विधायक।
0: शाबाश। और तुम?
1: सरदार, उद्धव के 9 में से पूरे 6 सांसद।
0: अरे आओ चंडा, तुम कितना आदमी लाए थे रे?
1: सरदार, हम आम आदमी पार्टी के 10 में से पूरे 7 सांसद लेकर आए थे। हाँ,
0: यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कहीं चुनाव होता है तो विपक्ष बोलता है अपने आदमी छुपा लो वरना। ये 20, ये 6 और ये 7, समाजवादी के पास 37 सांसद है, पूरे 37। आप कितना लाएंगे महाराज?